गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

0: पूरा पानी हूँ इस प्रकार का ही जानना करो
1: बिना यत्न प्राप्त नहीं
0: वो बिना यत्न करे प्राप्त नहीं हो सकता
1: जात न सबको दान
0: सारिया जाता दान नहीं सी हो सकता सूत्रा कहो वरना भी स्त्रियों आगे ही नहीं सी वेल शास्त्र के आन की

0: के उल्टाई पुत्र जब
1: राम राम उल्टाती निकी मुसलमान की सा देवी नानकी कहता
0: त्याग दियो लख साठ
1: मूर्खताई समझ करके गुरु नानक की बाणी उल्टाई है छड़का मारा राम राम।

मांगे भी सुनाओ जो करके श्री मुक्तसर साहब तो अठको रे जिसका नाम मते भी सुनाओ करके मशहूर थी। इतने सतगुरु नानक देव महाराज साहब सच्चे पातशाह पुजे सन। चरण कवल गुरुद्वारा गुरु साहब का बनिया होया है। इस स्थान के उत्ते महाराज साहब के माता पिता माता सुभराई जी ते पिता फेरू मल जी इन्हों के घर गुरु साहब जी ने कृपा की लोड़ रखते सन। पुत्र की आस थी उन्होंने गुरु साहब के चरणों की शरण प्यारे सतगुरु नानक देव के चरणों को उन्होंने माता पिता ने कह के बेनती की गरीब नवाज श्रेष्ठ भागा वाला आपकी बख्शिश वाला साढ़े घर आप पुत्र बख्शो। सुन के सतगुरु नानक देव महाराज साहब जी ने बहुत प्रसन्न हो के वचन किए कि साड़ी गद्दी के मालक इन्हों का नाम तुम लहना रखोगे ये नाम वाले हो सतगुरु महाराज साहब बख्शिश करके जो आ गए। एक साल तो बाद 1561 बिक्रमी सी उस वक्त साहब सिंह जी सतगुरु अंगद देव महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने उस वक्त बाबे फेरू मल के घर में भाग लाने वास्ते माता सुभराई जी की कुख में सफर करने वास्ते अवतार धारण किया। गुरु नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह दुनिया च प्रगट इस तरह होए जिमें साध संघ जी सत के संतोख तो दया धर्म विचार के गुणों का अगर काल ही पिया होया गुरु महाराज साहब ने सारे गुण दुनिया को आपके जन्म के नाल ही प्रगट कर दिए। गरीब नवाज के नृत्य जानी विराग के वेत दोवें नृत्य ही महाराज के सज रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह के श्रद्धा के विश्वास रूपी सुंदर कर्म सज रहे हैं। आपके दान करने तो सेवा रूप हथ सज रहे हैं। उद्यम करना गुरु की आज्ञा के चरण रूप चरण देने सज रहे हैं। इस प्रकार सारे अंगा गुणों के समेत गुरु साहब ने अवतार धारण किया। सतगुरों के अवतार धारण तो साहब संगत जी माता पिता ने बड़ी खुशियां मनाईया। आज भी गुरु साहब की कृपा गुरु नानक की कृपा नाल बालक अवस्था च माता पिता की गोद में खेलते रहे। समा पा के महाराज साहब सच्चे पातशाह का शरीर वड्डा हो गया। वड्डा होने तो देवी चंद जो खत्री सी इस खदूर साहब के निवास करने वाला उसने ये मते की सराह जाके बाबे फेरू मल के पुत्र बाबा लहना जी के ताई अपनी पुत्री का नाता कर दिता। नाता करने तो गुरु महाराज साहब जी की शादी हुई सतगुरों के महल साधी माता का नाम माता खीरी भी होना सब सुन। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी ने कुछ समा बतीत किया। फिर पिता जरा सचखंड गौन कर गया। बाबा फेरू मल जी बलोचा की धार उस वक्त आई। वो बलोचा की धार आने तो साहब सिंह जी तीन सारा बलोचा ने लोग धारा माया करते आके बलोचिस्तान उन्होंने आके सारा पिंड फेर करता उजाड़ता और फेर पिया साहब सिंह जी हूं तक। फिर नांगे ने आवाज किया इस करके नांगे भी उस सराह करके बजता है। पहला मते की सराह हरी के मते की सराह उसका नाम से हूँ संत गुरमुख सुनाने अगे थोड़ा जा गुमज महाराज साहब सच्चे पातशाह की यादगार फेर उत्ते बनिया होया। संत गुरमुख सिंह साहब जी ने जिन्हों बाबा ने इतों की सेवा संत साधु संघ ने सारे मिलकर महात्मा ने की है उस स्थान की सेवा सारे दुनिया ने मिल करके गुरु साहब का बड़ा आलिशान जन्म स्थान मनाया। उत्थे नांगे की सराह में एक सरोवर सुंदर बनाया है। होर भी इमारत बनाई है लंगर के स्थान बनाए है। ये बड़ी भारी चढ़दियों कला की सेवा संत महाराज तो गुरु साहब ने करवाई है। इस प्रकार साहब संघ जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी जदों उत्थे निवास करके बलोचा की धार ना के पिंड उजाड़ दिता। देवी चंद के घर में कोई पुत्र नहीं सी। अपनी माता खीरी पुत्री बड़ी प्यारी सी उसने वो चाहता सी कि यही जी औकड़ के वेले पुत्री मेरे पास ही रवे।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਛ ਚਿਰ। ਬਾਬਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਸਰਾ ਸੀ ਦੇਵੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਰਾਮ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਨ।

लेकिन गुरु साहबा ने अपने वेले ऐसा नहीं सी कीता। गुरु साहबा अपने वेले ऐसा नहीं सी कीता। गुरु साहब ने दादू की समाधि नूं नमस्कार करके तीर नाल इक्को ही गल तां सिखाई सी भी कदे गुरु भी ऐसा करे सिखा तू तद भी बांह पकड़ खलोगे बांह पकड़ सकदा होवें भी सतगुरु तू यह क्यों कर रहे हैं सानू तू की उपदेश देना ते आप तू की करना है। और बकायदा गुरु ने फिर यह नहीं किया भी अज मैं तुहाडा गुरु हां ते तुसी मेरे सिख हो ते इत्थे लेन देन कर लीए। उन्हें आखिया भी नहीं सतगुरु तेनू इस गल की तनखा लगेगी इस गल की तेन भुगतना ही पवेगी। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने बचन आखे कहन लगे सत बचन मैं इस गल नूं मन्नांगा ते सतगुरु जी ने उस वेले अपने सिखां कोलों लवाई हुई तनखा नूं पूरा कीता सी। अज साडी कौम नूं इसलिए वरत्या जा रहा है मैं बेनती करा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। जदों गुरु ने कड़ा दिता सी उदों कड़ा भी इसे लिए दिता सी क्योंकि गुरु पातशाह ने कला वरताई सी उस वेले एक भाणा वरताया सी ते कुछ एक पंडितां नूं बुला के भी सिखां दी मैं पकियाई देखा। साहब कहण लगे भी भलिया पुरखा आ मेरा हथ वेख ते मैनूं लगदा मेरे ते कोई कष्ट है। हुण ओह लोग बेचारे इत्थों तक ही सीमित ने उहदे कोल तां कोई चला जावे उहनूं इह थोड़ा पता भी इह गुरु है। उन्हें सोचा भी कमाल है इन्ने चिर की गल नहीं सी इन्हें साड़ी मनी तो हुण हाथ दिखाउण लगे ने। सतगुरु नूं कहण लगे भी तुहाडे ते आउण वाले समय च कष्ट आउण वाला है। साहब कहण लगे निवृत्ति किवें हो सकदी है। कहण लगे कुछ एक रस्ता बस्ता सानू दिओ तुसीं निवृत्ति कर देंगे असीं कोई वड्डी गल नहीं। उन्हें आख्या की देना पवेगा। कहण लगे कुछ एक दाल कुछ एक तेल ते कुछ एक उस वेले दे जो नमक वगैरह जां मिठा वगैरह जो उन्होंने उस वेले दसिया ते उन्हें आख्या भी ठीक है। सतगुरु जी ने उन्होंने खोतियां ते भर के लदा के भेज दिता सिखां रस्ते चो जाके लुट लिया। कहण लगे सजना तू भावे गुरु दे घर रोज लंगर चलदा तू रोज परिवार समेत आ रज के खा थानू कोई मुश्किल नहीं है। जे तेरे घर विच भी कोई मुश्किल है तो रस्ता बस्ता असी तेनू लद के दें लैके जा कोई मुश्किल नहीं। गुरु घर का दिता हुआ कदे घाटा नहीं आता। पर जिवें तू अज लैके चलिया ना यकीन जानी असी अज मंगू तेनू लेके नहीं जे जान देना यह तो कलंक लग जाएगा इतिहास नूं। उन्हें आख्या फिर किवें जान दोगे। उन्हें सारा कुछ लुट के वापस लैके आए। मैं बेनती करा सिखां नूं परखण वास्ते सी ना कि गुरु गोबिंद सिंह नूं किसे पंडित विच विश्वास सी कदा चित नहीं ऐसा ना सोचियो पर सिख नूं परखण वास्ते सी। और सिखां मोड़ के लिआंदा ते ओह दाल दे बनाए बड़े उस वेले ते बड़े बना के छकाए सिखां नूं ते तेल विच तलके ते सतगुरां ने उस वेले सिखां ने याद रखण जोग बात है। मैं बार बार बेनती करा एक एक इतिहास का नुकता तुहाडे नाल सांझा करना चाहुंदा। उस वेले आनंदपुर साहब दे विच लोहगढ़ एक फैक्टरी सी बकायदा और उस लोहगढ़ की बनी हुई वह नागड़ी है जिदे भाई बचित्र सिंह ने मस्त हाथी नूं मोड़िया सी। उस लोहगढ़ की फैक्टरी विच सिखां ने कड़े बना के ते अपने हथां विच पाए। सतगुरु जी ने पुछिया भी भलियो आए तुसीं गहने किवें पाए ने ते उस वेले गुरु के सिखां ने आख्या सी भी सतगुरु जदों गुरु ते भी कोई भारी बन जाए ना तो फिर सिख टालना जानदे ने भी ओह भारी किवें टालनी है ते जदों सिख गुरु ते भी औखी घड़ी बन जाए ते सिखां नूं पता इस गल दा किवें करना। मैं सिर्फ इसलिए तुहाडे अगे बेनती रखी है भई इतिहास दे कुछ एक नुकते ने जेड़े अज ना पढ़न करके असी उन्हां नूं नेरगर्दी दे विच बर्बाद करी जा रहे हैं। मेरा मतलब किसे नाल अजोके समय नाल नहीं है। मेरा मतलब अकाल तख्त साहिब दी मान मर्यादा नूं कायम रखण लई है। कल कोई बंदा उठे काबज होके अपनी मर्जी दा जिवें अजोके समय दा राजनीतिक अपनी मर्जी नाल कुछ बंदे बिठा के अज अकाल तख्त साहिब दी मर्यादा दी तुहीन करवा रहे है ते साडा फर्ज बनदा वी सजना तेनू असी अकाल तख्त साहिब ते इवें दा भाणा नहीं बरताउण देना क्योंकि अकाल तख्त साहिब सिखी दी शान है। मैं वापस अपनी गल वल चलना चाहुंदा है तुहाडे नाल सांझे कर रहा सां कुछ पल इतिहास दे किवें इतिहास जिंदगी अंदर कीमती है। तवारीख दे लाभ ज्ञानी ज्ञान सिंह ने सिख तवारीख विच लिखे ने वह कुछ सांझे कीते ने अज आपां गल शुरू करनी चाहुंदे हां। सतगुरु जी दे घर दा इतिहास है जिहड़ा वह पूरा 239 सालां दा है। गुरु नानक साहिब जी दे प्रकाश तों लैके गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे आखरी ज्योति जोत समाउण दा दिन उस तो बाद विच बाबा बंदा सिंह बहादुर दा वक्त आउंदा है। मैं पर शुरू करन लग्गिया तुहाडे नाल इतिहास दी लड़ी

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लेके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: अज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए तैयारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े दी वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नू हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नू भजाउणा, सूरज वल नू मूह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जाता है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नू भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नू भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धि सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नू भी पता लग गया कि मैनू किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नू इस तरह घुमाउंदे होए आके उतरे महिलां दे सामने माता

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैना करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: महाराज ने कहते एक अजय सिंह तुम खड़े किए उसे दरवाजे से मूहरले पासे पहरे से वो सारा दान ए खो लिया है इन्नी कादी इच्छा जाग पई उन्होंने
1: आवन जानो बंद करते तिज आदक सर संग
0: तो इस कृपा कहते आना जाना ना सारे ना बंद करता आप ब्राह्मण ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे ये कोई चंगी गल है या महाराज सच्चे पातशाह सुना रहे हैं
1: कहे सुने मैं किसके नाई उचित अनुचित लख न सकाई
0: अरे थोड़े सिंह बारे ही हुंदे जांदे ने ये तो किसी के कहे सुने च नहीं है ये तो ना योग अयोग जानते ने तो इस प्रकार के नाल हुण सिंह तो महाराज के सूल ते चलणगे जो सिंघां नूं हुक्म आ सी तां ओह कम करना हुण माता जी कहिंदे मेरे अखे नहीं लगदे वो जिवें पिछे जे माता जी ने एक बारी अपनी मर्जी नाल ही कहता आखे लंगर एक टाइम कर दिओ मसंदा ने जाके डराता माता जी काल पै गया चारे पासे बई हुण तां बड़े लोग आ गए हुण तां अपना अन्न मुक जावेगा आपां वी भुखे मर जावांगे माता जी ने सतगुरु जी नूं कहण दी बजाए सीधा ही हुक्म करता भी लंगर एक टाइम कर दिओ जदों महाराज कोले खबर गई तां महाराज ने माता नूं पुछया माता जी ठीक असीं थोड़े साहिबजादे आ पुत्र हैं पालिया ठीक है पर गुरता गद्दी दे मालक आ हुक्म संगत उत्ते थोड़ा नहीं चल सकता तुसीं किहनूं पुछ के लंगर इउं कीता इह तां एक वो गल होगी कि बेसिदकियां वाली गल होगी महाराज ने कहा कि रोज तो तुसीं पढ़दे हो काहे रे मन चितवै उद्दम जाहर हर जीव परिया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ता कर जगाग्या कर धरिया माता जी तुहाडा अपना स्थान है सत्कारयोग है पर तुसीं अपनी मर्जी नाल कोई बचन ना करिया करो फिर काफी महाराज ने वीर रस विच आके बचन भी करते मसां बख्शाए सी सो इस करके हुण भी माता जी नाराज ने कहिंदे इह थोड़े जिहड़े सिंघ ने ये अपनी ही मनमर्जियां करते हैं
1: श्री सतगुर ऊचे बोल मात के सुने श्री सतगुर श्री मुक्ते भने
0: जदों माता जी के उची उची बोल सुने तो उस वक्त सुभायमान मुख विचों गुरां ने इस तरह वचन कहा
1: मात कोप के सन अस कीना हुक्म तुमारो को ने चीना
0: सो उस वक्त माता जी कादा गुस्सा कीता है तुहाडे हुक्म नूं जाणिया नहीं है किसने नहीं जाणिया इने तुहाडा हुक्म मन्निया दसो मैनू
1: सुन सुत ते प्रसंग कह दयो तौ सिर सदका बिपरन लयो
0: सुन के अपने साहिबजादे भाव दसवें पातशाह तो माता जी ने सारी गल सुनाई तुहाडे सिर सदका मैं ब्राह्मण नूं दान दिता सी मैं सारिया चीजा ब्राह्मण नूं दित्तियां सन
1: ले जात सो सिंह न छीने हुए निसंग अस उदम किन्ने
0: देखो किन्ना उपद्रव कीता उन्होंने निसंग होके आ सारिया चीजा उन्होंने खो लिया कि ब्राह्मण दे पासों
1: श्री सतगुर
2: चौपाई भीम चंद सैलेंद्र बिलंदा पनियो सुनो तुम सकल गिरंदा क्यों न भविखत बात विचारो सिर पर शत्रु प्रबल विचारो
3: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ प्यार सत्कार सहित ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਜੇ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ कि महाराज दसवें पातशाह नाल जंग आपां नूं करना चाहिए मिलकर, बड़े प्रबल दुश्मन ने अपने, नहीं कल नूं अपना राज खो लैणगे, दबा लैणगे आपां नूं। सो इस तरह दीआं विचारां करन लई इकट्ठे होए ने, आओ सत्कार नाल इतिहास श्रवण करिए, रसना करिए, पवित्र गज के आखो।

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है युद्ध विच टिक के लड़ो हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम ए वर हो गया खालसे नूं भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं बहुत वीर रस अखां विच लालियां शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अर्दमणी
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है भाव इहदा नाम ज्वाला बमणी दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईया।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली अपनी गलती का एहसास किया है उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन मैं गर्व गुंजार
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बिसमाने रिप सुन तुंकार
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के इस तरह खालसा

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी
1: पंथ खालसा हो जस थोरा
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच
1: पयत कहो कहो को टोरा
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते
1: सकल सतर को हाथ कर कैसे
0: सारे दुश्मनां नूं मार करके किस प्रकार
1: राज पाए किम कहिए तैसे
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो हे पहाड़िए होर राजे ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है ये दसो मेरे मन का शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा
1: वधे तेज किम लह धरने
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्हां ने
1: ठहरे राज कौन कर करने
0: इन्हां दा राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा
1: बहुतन की किरत अलप करें किम
0: ए बहुतियां दी किरत बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने काम करना है ए हजार बंदा किवें कर सकता है मैं तो यह पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा वड्डा है
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू
0: सारे दुश्मनों के उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा
1: हान लाभ जाने इस बेरा
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा किस तरह राज करेगा
1: वरते वरतारा जग जथा
0: जिवें जग दे विच वरतारा वरतेगा आने वाले समय च
1: श्री मुख सुंदर ते कह तथा
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने बचन इस प्रकार कहे
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए
0: ए तां साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ जिवें असीं चाहुंदे आं उसे तरह की हवा चल पेगी अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी
1: खाए गो खर्च लेंगो लाल
0: सो इस तरीके दे नाल कहिंदे खाणगे खर्चणगे लए गो लाल हुण इथों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने खाए गो दो खा खर्च खखा ते ले गो तो लल्ला ते लाल इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी सरकै गो युद्ध माहे करै गो निहाल वो सरकै दे सस्से नूं लैणा ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है ये खालसे दा एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा जंग जितेगा अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार
0: खारी तो भाव खारा समुंदर उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार जंग करके लोहा खड़का के हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे खारी तो खखा खा री छड़ देना खा लक्ष्मी तो लल्ला ਖਾਲ ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ

0: एक तो जेड़े लोभी बंदा उहदे नाल प्रीति ना करो, मित्र ना बनाओ उहनू अपना, यह तो सारी दुनिया नू भी पता है। लोभी बंदे दे नहीं ठहरना, ना उहदे नाल गलबात करनी है। एक जेड़े पहाड़िए ने, ये पहाड़िया नू अपने मित्र ना बनाओ।
1: यार बरसों बरसै ऐसी सुनो सिख मम बचे जैसे।
0: चारे बरना दे नाल बरतना भी है। बरतना किवें है? कहिंदे इस तरह मेरा सिख चारे

0: सुपती नित मैं सतगुर मन भावत कर खान।
1: मन पाउंदा भोजन छक के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह

0: एक काम मैं बहुत चंगा करांगा, मेरे राज दे विच जेड़ा भी बंदा भगती करेगा ना, वो मैं नहीं रखिया भी ये ब्राह्मण तरेगा जां ये तां तरेगा ब्राह्मण है जां ये उच्ची जाति दा नीवी दा। मेरे राज दे विच जेड़ा भी बंदा भगती करेगा, माई भाई कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, नीच है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई तुर्क है, कोई शंकर वर्णिया है, कोई होर प्रकार दे आश्रमां वाला है, कोई माड़ा चंगा। मेरे समय में जीने कहता सतनाम श्री
1: साहिब जी,
0: सतनाम श्री कहना। मेरे समय में जेड़ा भी बंदा मर्जी वाहेगुरु कहे उसे भी तार दिया करांगा, क्योंकि मेरे समय में भगती फलेगी बहुत ज्यादा, पर लोकी करनगे नहीं। कोई अकल वाला बंदा होगा जो भगती करेगा, बाकियां दी बुद्धि तो मर जाएगी विषयां दे विच होर कम्मां दे विच, पर मेरे समय में है कि नाम का फल बहुता मिलेगा लोगों।
1: भगत करै पापी तरै, नाम बिना दंडो सक, नरक सुरग मम राज।
0: नरकां ते स्वर्गां विच मेरा ही राज होवेगा कलजुग कहिंदा। नाम तो बिहूणिया बंदिया नूं मैं बहुत दंड दियांगा, जिहड़ा बंदा नाम नहीं जपेगा उहनूं चंगा दंड दियांगा, जिहड़े बंदे नाम जपणगे उहनां बंदिया नूं मैं कुछ नहीं कहांगा, क्योंकि नाम ही मेरे समय विच सारिआं नालों वड्डी चीज है।
1: भूमी दोनो गत्र दे जोनी अर्थ समाज।
0: तो इस तरीके दे नाल मेरे समय दे विच जो तुरने जोग तोरा है ना, वो लोग ज्यादातर की करया करनगे, पृथ्वी पर दो ही तोरे तोरांगा, एक विषय विकार ते एक पदार्थां दी एकत्रता, बस दो ही काम होणगे। एक तां लोकी विषय विकारां वाली ज्यादा झुकाव रख्या करनगे, ते एक आपदा घर भरिया करनगे, समान लिया लिया लिया लिया के लोगों भगती नाल कोई मतलब नहीं होया करेगा, बस यही गल्लां करनगे। जेकर विषयां दी गल सुना दो तां तां दुनिया दुआले इकट्ठी हो जाया करेगी, जिथे भजन की गल होवेगी उथों लोग भज्या करनगे। इस तरीके नाल संसार दा मेरे समझ वर्तारा होवेगा।
1: ए भावी पूर्ण करो तब जमोगा खोव।
0: ए भावी पूर्ण होवे मैं तब उस वक्त अपने समय दे विच जावांगा, जा करके इस चीज नूं पूरी करांगा। तो तुसी ए मैनूं वर दिओ कि मैं अपने समय विच ऐसे कर्म करां।
1: एक तुम्हारे दंड सौ अवर न जानो दूब।
0: तो होर मैं किसे नूं नहीं जानांगा, ब्रह्मा दा दंड सहांगा, किसे दूसरे नूं पछाणांगा नहीं, भाव परवाह नहीं करांगा किसे दी, बस एक तुहाडा दंड जां ब्रह्म दा दंड सहारांगा, बाकी मैं किसे तो नहीं डरना, ना मैं किसे दी परवाह करनी है।
1: सतगुर के एक समय मैं ब्रह्मा कहत सुहात।
0: सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहणगे फिर एक समय ब्रह्मा इस तरीके नाल कहिंदा सोभनीक होया।
1: सुन सुत भूमि जाइयो धर्म कर्म विख्यात।
0: लग्या पुत्र तो जदों जाएगा ना धरती ते, तो उस वक्त धर्म कर्म जेड़ा कर्म संसार दे अंदर जाके प्रगट करना।
1: सुन कल युग मेरो हुक्म तू मम आग्या वार।
0: हुण कल युग तू सुन, ए तू ना मेरे आग्या दे विच चलना, इस तरीके नाल के आग्या तो बाहर नहीं जाना।
1: सर्व मंत्र तोए राज रद नाम मंत्र सिद्ध सार।
0: ब्रह्मा कहण लग्या पुत्र कलयुग सुन, तेरे समय विच जिन्ने मंत्र जंतर तंत्र होणगे ना जेड़े चल रहे ने सारे रद्द कर देंगा, तेरे समय विच इक्को ही चीज

0: चीर के उलंघ के साज उज मुक्ति प्राप्त कर लेगा। चारा मुक्तियां विचों सयुज मुक्ति है जेड़ी श्रोमणी।
1: अपनी नारी सच ब्रित खाज अखाजी ब्रित।
0: अपनी नार ते संतोख सच दी विचार या सच दा